0: So that was a sweet, melodious song. And you can see how the words are so simple and sweet, but they convey such a good meaning. What do you think?
1: Bilkul, bilkul. Jaise gana shuru hota hai, jaane kya tumne kahi, jaane kya maine kahi, baat ban gayi. Kuch na, kya tha?
0: Baat kuch ban hi gayi.
1: Ban hi gayi. Matlab, that's a, like, you know, jawan dil, ek ladka ladki milte hain, uske baad ho jata hai. So then sometime in business terms also, हाँ अच्छा उधर मैं कर रहा था ना हिंदी में जो बोलते हैं मैं मकान खरीदने के हाँ बात बन गई या business बात बन गई. Anyhow, next song क्या है?
0: तो music lyricist के बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो as you said, let's do a little mix and match of lyricists, not the same lyricist all along. So the next lyricist is Shailendra. वो भी आई थिंक 1950s और 60s में काफ़ी उनके गाने अच्छे थे. ही वॉज नोन फॉर कैप्चरिंग ब्यूटिफुली ह्यूमन इमोशंस एंड ऑल्सो अगेन सोशल रियालिटीज. सो ही रोट मैनी ऑफ द सॉन्ग्स फॉर राज कपूर मूवीज. सो लेट्स हियर अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अनाड़ी एंड आई थिंक दिस वॉज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग.

0: जी हाँ, ये गाना लिखा था शैलेंद्र का, गाया हुआ मुकेश का, और म्यूजिक था शंकर जयकिशन का। और
1: तो इन ट्रियो ने काफी अच्छे गाने, मशहूर गाने दिए हैं बॉलीवुड को।
0: राइट,
1: शैलेंद्र
0: राइट
1: ने लिखे थे, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, तो गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक मुकेश,
0: और ये गाना
1: और
0: तो
1: एक्टर जो थे राज कपूर।
0: राइट, और जो ये गाना तो सदाबहार गाना है, यू नो, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। एंड इट्स
1: अबाउट पॉवर्टी एंड राइटसनेस एंड ऑनेस्टी एंड हाउ दैट डजंट गेट यू अहेड इन लाइफ,
0: नॉट बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। सो
1: तो शैलेंद्र जी, ये भी आई थिंक ही केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, एज वी रिसर्च्ड।
0: राइट, ही वाज बोर्न इन रावलपिंडी,
1: दैट्स इन पार्ट ऑफ
0: पाकिस्तान,
1: पंजाब, व्हिच इज इन पाकिस्तान नाउ।
0: राइट, एंड वेल इन कॉलेज इन मथुरा, व्हिच इज इन यूपी, ही वाज स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स विद वन ऑफ हिज बडीज, एंड देन यू नो इवेंचुअली डेस्टिनी टुक हिम टू, तकदीर उनको बॉम्बे ले आई, और ताकि वो इंडिया के म्यूजिक लवर्स को और संगीत प्रेमियों को, गीत प्रेमियों को अपने अपने जो उनका क्रिएशिव क्रिएटिव माइंड्स है, उनको गाने दे सके।
1: एंड वन ऑफ द स्टोरीज व्हिच आई रेड अबाउट शैलेंद्र इज व्हाइल ही वाज स्ट्रगलिंग इन मुंबई इन द फिल्म इंडस्ट्री ट्राइंग टू फाइंड सम वर्क, ही मेट अप विद शंकर जयकिशन हु वर द म्यूजिक डायरेक्टर्स फॉर आर के फिल्म्स इन दैट टाइम, हु हैड प्रोमिस्ड हिम दैट दे वुड they would give him a chance, they would give him a break, but he kept waiting. And so whenever they would meet, see him around, they would say, yeah, we'll definitely call you, but he never heard from them. So the next time he saw them, he gave them a little note which said, choti si ye duniya pehchane raaste hain, tum kabhi to miloge, kahin to miloge.
0: उन्होंने लेटर में लिखा, और वो लेटर जो बाद में आगे चल के,
1: तो शंकर जयकिशन वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस वर्ड्स दैट दे मेड, दे कॉल्ड हिम एंड दिस वर्ड, दिस लाइन मेड इनटू अ सॉन्ग एंड दे गेव हिम अ ब्रेक
0: एंड इट बिकेम ए सदाबहार गाना।
1: एंड दिस वाज अ सॉन्ग व्हिच आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग नेक्स्ट, एंड दिस इज बाय किशोर कुमार एंड द मूवी इज रंगोली। So it's a nice, upbeat, fun song.
0: Kabhi to miloge.

0: जी हाँ, छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तो रास्ते तो अभी आप पहचाने ही हैं, मतलब, और दुनिया तो छोटी हो ही गई है इंटरनेट के साथ. आई थिंक दैट्स अ फनी पार्ट ऑफ इट.
1: या इट्स, आई थिंक इट्स अ मेटाफोर. दुनिया कभी तो बोलते हैं बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, कोई बोलते हैं छोटी सी दुनिया. दैट हैपेंस व्हेन यू एक्सीडेंटली मीट समबडी, लाइक व्हेन इफ वी आर इन अ हॉस्पिटल वी मीट समबडी हू हैव नॉट, वी हैव नॉट सीन फॉर अ व्हाइल in the hospital corridor and we're like, right, wow, right. How
0: or at airport or some other restaurant after a long time, or aap kisi ko jante ho, koi common janne wala mil jata, oh I know him from there, oh I met him there, or we went to school together. Anyhow, bada
1: so
0: acha
1: that's
0: gana
1: the
0: tha.
1: Comment, yeah, that's what it means, ke choti si duniya hai, tum kabhi to miloge, kahin to miloge.
0: Ye jo movie thi uska tha naam Rangoli.
1: Achha.
0: Rangoli ko hindi se English mein translate karne ki कोशिश करके बताइए.
1: रंगोली इज आर्ट वर्क और समथिंग,
0: राइट? जो लिखा है ए कलरफुल पैटर्न ऑफ लाइफ, दैट्स रंगोली. एनी हाउ, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट सॉन्ग.
1: ओके लिसनर्स, लेट्स गो बैक टू अनदर सॉन्ग फ्रॉम साहिर लुधियानवी. दिस इज अ सॉन्ग विद अ काइंड ऑफ अ सोशल थीम इन इट. And very nicely written. It's from a movie, Fir Subha Hogi. And I think this movie is based on the novel Crime and Punishment. If I'm not wrong, I'll have to fact check that. But that's what I thought. So this is again a very nice song sung by Mukesh and Asha Bhosle. And the movie is Fir Subha Hogi. And incidentally, we have Ranjana, who is from Ludhiana. So, hi Ranjana, I'm glad you're listening and you're from the same town as Sahir Ludhianvi.
0: I think Seema is also from Ludhiana, right?
1: Yeah, I think Seema is from Chandigarh.
0: Oh, Chandigarh, okay.
1: But I know Sahir is one of her favorite poets, so I hope you're also listening, Seema. We're hoping to hear from you.

0: जी हाँ, तो ये गाना था, मूवी थी तीसरी कसम। और मैं सुनने वालों से पूछना चाहती हूँ कि गुलफाम का मतलब क्या है, क्योंकि ये गाने के शब्द थे, मारे गए गुलफाम।
1: हमने मीनिंग तो देखा है, लेकिन कोई देखते हैं मैसेज करके बोलता है कि उनको क्या लगता है कि इस शब्द का मीनिंग क्या है।
0: एनीवे, तो ये था थोड़ा हट के गाना, लिखा था शैलेंद्र ने, पिक्चर थी तीसरी मंजिल, और इस पिक्चर को नेशनल अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट मूवी, एंड अनफॉर्चुनेटली डिडंट डू वेल एट दैट टाइम, बट नाउ इट्स वन ऑफ द कल्ट क्लासिक, रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिक मूवी।
1: मेरे को तो इस पिक्चर के गाने बहुत पसंद हैं। आई थिंक
0: या ऑल द सॉन्ग्स
1: ऑल द सॉन्ग्स आर रियली गुड, लाइक चलत मुसाफिर कर लियो रे,
0: छोड़ दिया
1: या
0: रे।
1: दुनिया बनाने वाले, तो इट्स रियली नाइस। आई थिंक एनी हाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट,
0: डोंट
1: लुक एट द मैसेज,
0: चलते
1: लेट्स
0: हैं एक और गीतकार की ओर। आई थिंक जो वी हैव ग्रोन अप विथ हिम एंड एवरीबडी इज मैसेजिंग मी सॉन्ग्स अबाउट हिम, आई थिंक ही इज वन ऑफ आर जेनरेशन, वी नो हिम एज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटर्स, एंड दैट इज गुलजार। तो गुलजार ने तो काफी गाने अभी भी लिख रहे हैं, ही इज अ पोएट, ही इज रिटन इन उर्दू, इन हिंदी, ही इज रिटन नॉन फिल्म सॉन्ग्स। So he started off again, I think, in the early 60s. Let's see, we know what his real name was. We'll reveal that next time. First, let's not waste much time and listen, start one of his songs. So ye gana hai Gulzar ka likha hua, film hai Khamoshi. Aur fir se Lata Mangeshkar ji ne gaya hai.

0: जी हाँ, बड़ा ही जो मन को छू लेने वाला गाना गुलजार साहब का लिखा हुआ लता जी की आवाज में, और
1: एप्ट फॉर द मूवी खामोशी.
0: खामोशी हाँ,
1: क्योंकि इसमें है कि होंठ कुछ कहते नहीं, सिर्फ आंखों में देखे.
0: आंखों से ही लोग बोलते हैं ना, आंखों और चेहरा देख के आप दूसरे इंसान की जो अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो पढ़ सकते हो. एंड तुमने अंधेरी का कभी पानी पिया था बचपन में?
1: नहीं, क्यों?
0: तुमने अगर अंधेरी में बचपन में 60s में पानी पिया होता तो तुम भी एक अच्छी कवि बन सकती थी, पोइट बन सकती थी, शायर बन सकती थी, क्योंकि 1960s में साहिर लुधियानवी और गुलजार दोनों अंधेरी में रहते थे. देयर वाज समथिंग इन दैट वाटर इन अंधेरी, आई थिंक. एनीहाउ, दैट गपशप, व्हाट डू यू हैव नेक्स्ट?
1: तो गुलफाम का मतलब कईयों ने भेजा है, तो सीमा सेड इनोसेंट वन, इट कुड बी समवन हु इज ब्यूटिफुल, बट आई थिंक द लिटरल मीनिंग, इट्स अ पर्शियन वर्ड एंड द लिटरल मीनिंग कमलेश पटेल इज राइट, लिटरल मीनिंग इज रोज फेस और रोज पेस्ट,
0: गुलाब के फूल के रंग जैसा.
1: हाँ,
0: अगर पोइटिक मीनिंग देख रहा हो, सुंदर, हसीन, सुकुमार, दैट्स पोइटिक और मेटाफोरिकल मीनिंग. और जो मूवी, जो तीसरी कसम से गाना आपने प्ले किया था, दैट्स बेस्ड ऑन ए शॉर्ट स्टोरी बाय फांसी वर्ण रेनू. ओके, लेट्स टॉक नेक्स्ट अबाउट नेक्स्ट सॉन्ग.
1: नेक्स्ट सॉन्ग, सो वी हैव अ फ्यू गुलजार सॉन्ग्स, एज वी नो आवर लिसनर्स लव गुलजार. तो मैंने दो दूसरा एक गाना चुना है गुलजार का, इट्स अ लिटिल नॉट दैट ओल्ड मूवी, थोड़ा रिसेंट मूवी है, और ये मूवी है गुरु, एंड ये लिखा है गुलजार ने, गाया है हरिहरन और अलका याग्निक ने, और म्यूजिक है AR रहमान का. तो बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है गुलजार साहब की, तो पेश करते हैं सुनने वालों के लिए. आई होप यू एंजॉय इट.

0: So that was such a nice composition by Pandit Bharat Vyas ji. This song is requested sent to me by Seema Khurana. And the music is by Satish Bhatia. And the film was Boond Jo Ban Gaye Moti.
1: Ye maine TV mein dekhi thi picture. I think black and white mein, probably early 1970s mein. और जो भरत व्यास का जो बर्थ है बीकानेर का था और जनवरी 6 एंड दैट शेयर्स बर्थडे विद माय डैड एंड देन ही वाज स्टडीड इन कलकत्ता एंड मूव टू बॉम्बे एंड गेव अस सम वंडरफुल वंडरफुल पोएम्स व्हिच बिकेम गीत्स एंड संगीत म्यूजिक दे बिकेम लाइक
0: और थोड़े भक्ति वाले गाने भी हैं एंड सीमा ऑल्सो मेंशन जो ए मालिक तेरे बंदे हम वो गाना भी भरत व्यास जी ने लिखा हुआ है तो थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन काइंड ऑफ एप्रिशिएटिंग नेचर एंड इनडायरेक्टली सेइंग हु इज दिस ग्रेट आर्टिस्ट मीनिंग देयर सम हायर पावर देयर अ गॉड हु हैज डन दिस ब्यूटिफुल क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल नेचर
1: एंड वर्ल्ड या एंड उनका एक और गाना भी बड़ा फेमस है मनीषा आधा है चंद्रमा
0: रात
1: आधी दैट्स आल्सो रिटन बाय भरत व्यास तो चलिए
0: अगला गाना अपने चारू की बात की तो ये फरमाइश है चारू की अगेन गुलजार की लिखी हुई गुलजार का लिखा हुआ गाना है और मूवी है इजाजत आई थिंक ये मूवी में भी आशा भोसले ने बहुत अच्छे बढ़िया गाने दिए थे तो उनमें से ये एक गाना पेश करती हूँ

0: कुछ बोलो.
1: ओके लिसनर्स, चलिए थोड़े नए संगीतकार के बारे में बोलते हैं.
0: जो पुराना का भी जो गाना था काफी भावपूर्ण था, दिल को छू लेने वाला. तो अभी नया लिसनर तो वही है शायद. आई थिंक कुछ लोग ऑफ ऑन भी करते होंगे बीच में, यार मेरे को लगता है, या सुनते रहते हैं. इट्स हार्ड टू से. एनी हाउ, नया सिंगर कौन, नया लिरिसिस्ट कौन से गाने सुनवा रही हो, किन के?
1: तो अभी 90s पे आ जाते हैं. 90s के लिरिसिस्ट हैं जो अब भी चल रहे हैं. दैट इज अ गाय नेम्ड समीर. समीर अगेन इज हिज पेन नेम. आई थिंक ही हैज रिटन अ लॉट ग्रेट नंबर ऑफ सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स. ही इज द सन ऑफ आई थिंक अनजान इज हिज फादर हु वाज आल्सो अ सॉन्ग राइटर फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. No, you're saying no.
0: No. He's a B.Com major from Banaras Hindu University.
1: Yeah.
0: शुरू में उन्होंने बैंक में जॉब लिया. उनको लगा नहीं, नोट गिनना और जमा करना और डेबिट क्रेडिट मेरे बस का नहीं है, मैं तो सिर्फ गाने लिखूंगा.
1: तो शुरू करते हैं समीर का लिखा हुआ गाना. आई थिंक ये फिल्म है दीवाना. सो एज आई सेड, आई थिंक ही स्टार्टेड ऑफ इन द 1990s. So let's enjoy the song sung by Kumar Sanu and Sadhana Sargam. And listeners, I do have your requests, so bear with me. Let's enjoy some of these songs which are from my playlist while I'm searching your requests and adding them to the playlist. So don't go away. Don't go anywhere. Keep listening. More to come in Geetmala.

0: तो नीरज जी के बारे में कुछ बातें बताइए अरुण जी।
1: तो नीरज जी का ओरिजिनल नाम था जो गोपाल दास सक्सेना, वो अलीगढ़ में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे धर्म समाज कॉलेज में, और उनका जो नेम फॉर राइटिंग पोम्स वाज इट्स कॉल्ड नॉम डे प्लूम नीरज। और उन्होंने काफी गाने लिखे, बीच में उनको लगता था कि ही जस्ट ए पोएट एंड नॉट राइटिंग फॉर मूवीज, एंड देन ही वाज फ्रॉम उत्तर प्रदेश इटावा डिस्ट्रिक्ट, और आफ्टर सम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स हु ही वाज वर्किंग विद लेफ्ट दिस वर्ल्ड ही बिकेम डिप्रेस्ड, बट ही गेव अस सम वेरी मेमोरेबल सॉन्ग्स, यू नो जो मोस्ट ऑफ देम आर यू नो भावपूर्ण, जो थोड़ा दिल को छूने वाले हैं। There are not many songs which are upbeat and all.
0: I think Devanand used him for his movies a lot. Many of Devanand songs are written by Neeraj. Right. I think especially Prem Pujari aur uske baad kuch picturein
1: Gambler, Sharmili, Prem Pujari, Kal Aaj Aur Kal, some of his songs from that movies. And unki jo book ka naam hai, his poem collection is named Kavanjali. It was published in 2014.
0: तो चलिए, दैट वॉज अ नाइस सॉन्ग श्रीवल्ली, थैंक यू ऑलवेज फॉर ट्यूनिंग इन। आई हैव सम सॉन्ग्स, आई थिंक सब फरमाइशें पूरी हो गई हैं, आई थिंक ऑल योर रिक्वेस्ट वी प्लेड देम, सो आई एम प्लेइंग सम ऑफ माय प्लेलिस्ट सॉन्ग्स विच वर समीर, एंड दीज आर द न्यूअर सॉन्ग्स, सो लास्ट ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ऑफ गीतमाला। The next song I'm going to play is from movie Aashiqui, and this is written by Sameer, and this is sung by Anuradha Podwal, and with her is Kumar Sanu. Nice song from Aashiqui. This is Aashiqui 1.